ओंकार प्रभु घाटे के स्वर संत अमृतराय की ये मराठी भक्ति रचना आपने सुनी। कार्यक्रम में अब एक गुजराती रचना प्रस्तुत है, स्वर हसमुख मंडालिया का।

हसमुख मंडालिया के स्वर में ये गुजराती पारंपरिक भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए आपसे है काकोली मुखर्जी के स्वर में संत कबीरदास की ये भक्ति रचना।

काकी मुखर्जी के स्वर में संत कबीर दास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं अंजना चटर्जी से संत सूरदास की ये रचना।

इसी के साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी।

ಮೊದಲನೇ ಸ್ವರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ ಪಗೆ ಆರು ಕರ್ವೆ ಇದೆ. ಪ ಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕರ್ವೆ.

0: You are listening to vocal recital by Shri Ayyappaya Halgali Mutt. He was accompanied on tabla by Pandit Satlingappa Desai Kallur and harmonium by Shri Shukru Sahab Mulla. Continuing the concert, now listen to vocal recital by Shrimati Neelayam Kodli. Rag, Miya Ki Todi, Vilambit Teen Taal, Sabani Sab.
1: आप सुन रहे थे श्री अय्यप्पया हलगली मठ का गायन. आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर, हारमोनियम पर श्री शुक्रु साहब मुल्ला साथ दे रहे थे. कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे श्रीमती नीला एम कोडली का गायन, राग मियां की तोड़ी, ख्याल विलंबित तीन ताल, सबनी सब.

0: You were listening to vocal recital by Shrimati Neelayam Kodli. She was accompanied on tabla by Shri Allam Prabhu Kadkol and on harmonium by Shri D. Kumar Das. This program was contributed by Akashwani Dharwad, Anytime Indian Music.
1: अब तक आप सुन रहे थे श्रीमती नीला यम कोडली का हिंदुस्तानी गायन. आपके साथ तबले पर श्री अलम प्रभु कड़कोड और हारमोनियम पर श्री डी कुमार दास साथ दे रहे थे. यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ द्वारा 24x7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक पर पेश किया गया.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग गुनकेली में ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थे जयंत पांडे। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे देवाशी सरकार। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You are listening to a khayal in Raag Gunkeli by our artist Jayanta Pandey, accompanying on the tabla Devashish Sarkar. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Raagam, 24/7 anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है उस्ताद फारूख लतीफ का सारंगी वादन. आइए सुने राग गोरख कल्याण. आलाप के पश्चात द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है. इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी आर प्रेजेंटिंग सारंगी रिसाइटल बाय उस्ताद फारूख लतीफ. लिसन टू राग गोरख कल्याण इन विच यू लिसन आलाप फॉलोड बाय द्रुतगत सेट टू तीन ताल.

0: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर भारतीय संगीत।
1: ये था राग गोरख कल्याण। तबले पर आपके साथ संगत कर रहे थे पंडित राजेंद्र अंतरकर। कार्यक्रम को जारी रखते हुए उस्ताद फारूख लतीफ अब सारंगी पर प्रस्तुत कर रहे हैं राग मेघ। आलाप के पश्चात मध्यलय गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है।
0: दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।
1: दैट वॉज राग गोरख कल्याण। यू आर लिसनिंग ऑन सारंगी बाय उस्ताद फारूख लतीफ। Accompanying him on tabla was Pandit Rajendra Antarkar. In continuation of program, Ustad Farooq Latif presents Rag Megh. Alap followed by Madhilay Gat set to Ek Tal and Dgat set to Teen Tal.

0: ये था राग मेघ, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे उस्ताद फारूख लतीफ का सारंगी वादन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अजीत पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी।
1: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
0: दैट वॉज राग मेघ। With that, we conclude.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. लीजिए अब सुनिए निशेंद्र किंजल का सितार पर बजाया राग यमन में आलाप. विलंबित और द्रुतगत दोनों ही तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चटर्जी ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. We now present for you a sitar recital by Shri Nishendra Kinjalk. He's accompanied on the tabla by Shri Prasoon Chatterjee. Shri Nishendra Kinjalk first presents Rag Yaman, in which you will hear the Alap followed by Vilambit and Drutgat. Both are set to Teen Tal.

0: अभी आप निशेंद्र किंजल का सितार पर बजाया राग यमन सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी प्रसून चटर्जी ने। और लीजिए अब सुनिए राग जय जयवंती, विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चटर्जी ने।
1: दैट वॉज राग यमन। श्री निशेंद्र किंजल नेक्स्ट प्रेजेंट्स राग जय जयवंती, इन विच यू विल हियर द विलंबित एंड द्रुतगत सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप निशिंद्र किंजल का सितार पर बजाया राग जय जयवंती सुन रहे थे, और लीजिए अब सुनिए ये धुन।
1: यू जस्ट हर्ड राग जय जयवंती। श्री निशिंद्र किंजल कंक्लूड्स हिज सितार रिसाइटल विद अ धुन।

0: अभी आप सितार पर ये धुन सुन रहे थे। तबले पर संगत की थी प्रसून चटर्जी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद दैट धुन वी कम टू द एंड ऑफ द सितार रिसाइटल बाय निशिंद्र किंजल। ही वाज अकंपनीड ऑन द तबला बाय श्री प्रसून चटर्जी। दिस प्रोग्राम वाज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

Da-di-da-ba-ba-ga-di-sa-di-sa-di-ga-ba-ba-da-ba-ba-ga.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं बाबूलाल गंधर्व का बेला बहार वादन। प्रस्तुत है राग गुजरी तोड़ी। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है तथा द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। उन्हें तबले पर संगति कर रहे हैं शंतनु किंजवड़ेकर। दिस इज रागम DTH चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी प्रेजेंट बेला बहार रिसाइटल बाय बाबूलाल गंधर्व। ही प्रेजेंट्स राग गुजरी तोड़ी, विलंबित गत सेट टू एक ताल एंड द्रुत गत सेट टू तीन ताल। ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय शंतनु किंजवड़ेकर।

ये था राग गुजरी तोड़ी। अपना बेला बहार वादन जारी रखते हुए बाबूलाल गंधर्व अब प्रस्तुत करते हैं राग जोग। मध्यलय गत रूपक ताल में निबद्ध है, ध्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। दैट वॉज राग गुजरी तोड़ी। इन कंटिन्यूएशन ऑफ हिज बेला बहार रिसाइटल बाबूलाल गंधर्व नाउ प्रेजेंट राग जोग। मध्यलय गत सेट टू रूपक ताल एंड द्रुत गत सेट टू तीन ताल।

ये था राग जोग। आप सुन रहे थे बाबूलाल गंधर्व का बेला बहार वादन। उन्हें तबले पर संगति कर रहे थे शंतनु किंजवड़ेकर। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज राग जोग। यू वर लिसनिंग टू बेला बहार रिसाइटल बाय बाबूलाल गंधर्व। ही वॉज अकम्पनीड ऑन तबला by Shantanu Kinzavdekar. This was a contribution by All India Radio Mumbai. This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपको राग माल

0: कौंस पर ख्याल गायन सुनवाएंगे। कलाकार हैं दिलीप कुमार पात्रो, आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं देवाशीष अधिकारी। तो लीजिए प्रस्तुत है राग मालकौंस पर ख्याल गायन। कलाकार हैं दिलीप कुमार पात्रो।
1: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनीटाइम इंडियन म्यूजिक। दिस इवनिंग वी प्रेजेंट A Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen to a khayal in the rag Malkaus. Our artist is Dilip Kumar Patro. Accompanying our artist on the tabla is Tarun Roy and on the harmonium is Devashish Odhikari. Listen now to a khayal in the rag Malkaus. Our artist Dilip Kumar Patro.

0: अभी आप राग मालकोंस पर ख्याल गायन सुन रहे थे। कलाकार थे दिलीप कुमार पात्रो। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे देवाशीष अधिकारी। ये है रागम, 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए, अभी हम आपको सुनवाएंगे राग बिहाग पर यशराज वादन। कलाकार हैं सुनील कबीराज। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तापस गुहा ठाकुरता। तो लीजिए राग बिहाग पर प्रस्तुत है यशराज वादन, कलाकार हैं सुनील कबीराज।
1: You were listening to a khayal in the rag Malkons. Our artist was Dilip Kumar Patro. Accompanying our artist on the tabla was Tarun Roy, and on the harmonium was Devashish Adhikari. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a recital on the Yasraj. Listen to the rag Bihag on the Yasraj. Our artist is Sunil Kabiraj. Accompanying our artist on the tabla is Taposh Guho Thakurata. Listen now to the Yasraj in the rag Bihag. Our artist Sunil Kabiraj.

0: अभी आप राग विहाग पर यशराज वादन सुन रहे थे। कलाकार थे सुनील कविराज। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तापस गुहा ठाकुरता। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम, 2400 घंटे, सातों दिन उपलब्ध, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू द यशराज इन द राग बिहाग। आवर आर्टिस्ट वॉज सुनील कविराज। Accompanying him on the tabla was Tapush Guho Thakurata. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्रस्तुत है अमित मुखर्जी का गाया ख्याल गायन. सबसे पहले आप कोमल ऋषभ आसावरी प्रस्तुत करेंगे. विलंबित रचना जिसके बोल है जगत का सपना झूमरा ताल पे निबद्ध है. तत्पश्चात आप तराना प्रस्तुत करेंगे जो कि तीन ताल में निबद्ध है. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं राजीव शुक्ला और हारमोनियम पर है इलियास खान.

अभी आप सुन रहे थे अमित मुखर्जी का गाया राग कोमल ऋषभ आसावरी। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का गाया राग दरबारी में विलंबित ख्याल, जो कि झपताल में निबद्ध है और बोल है जब सो भनक पड़ी मोरी आली। द्रुत ख्याल जिसके बोल है किन बैरन गान भरे, जो कि तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं राजीव शुक्ला और हारमोनियम पर है इलियास खान।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे अमित मुखर्जी का गाया राग दरबारी। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH पर हरदम हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सितार वादन. कलाकार हैं पंडित गिरिराज. राग है बसंत मुखारी. इसमें आप आलाप के बाद विलंबित और द्रुत गतें सुनेंगे तीन ताल में. संगत कलाकार हैं तबले पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया. दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. नाउ लिसन टू हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित गिरिराज. द रेंडिशन कमेंसेस विद द राग बसंत मुखारी. द कंपनीइंग आर्टिस्ट इज पंडित रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला.

अभी आप सुन रहे थे सितार पर राग बसंत मुखारी, कलाकार थे पंडित गिरिराज। ये है रागम, डीटीएच पर हरदम हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग रागेश्री, जिसमें आलाप के बाद विलंबित और द्रुत गतें होंगी तीन ताल में। That was राग बसंत मुखारी। You are listening to हिंदुस्तानी सितार recital by पंडित गिरिराज। This is रागम 24/7 DTH anytime Indian music. Tuning the concert, now the artist renders Rag Rageshree.

ये था राग रागेश्री। अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सितार वादन। कलाकार थे पंडित गिरिराज। संगत कलाकार थे तबले पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया। हर दम हर समय डीटीएच रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित गिरिराज। द कंपनी आर्टिस्ट वॉज पंडित रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला।

0: This is Ragam 24/7 DTH, Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है अभय रुस्तम सोपोरी का संतूर परवया राग विभास. तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अकरम खाने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now have for you a santoor recital presented by Abhay Rustam Sopore. He first presents Rag Vibhas. He is accompanied on the tabla by Ustad Akram Khan.

0: अभी आप अभय रुस्तम सोपोरी का संतूर पर बजाया राग विभा सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी उस्ताद अकरम खान ने। और लीजिए अब सुनिए राग भूपेश्वरी। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अकरम खान ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग विभास कंटिन्यूइंग विद हिज संतूर रिसाइटल। अभय रुस्तम सोपोरी नाउ प्रेजेंट्स राग भूपेश्वरी।

0: अभी आप अभय रुस्तम सोपोरी का संतूर पर बजाया राग भूपेश्वरी सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग भूपेश्वरी वी कम टू द एंड ऑफ द संतूर रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय अभय रुस्तम सोपोरी। ही वाज अकंपनीड ऑन द तबला उस्ताद अकरम खान। दिस प्रोग्राम वाज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भजन और श्यामा संगीत। आज के कलाकार हैं आनंदिता सरकार, अनिरुद्ध नाथ, अनुराधा चक्रवर्ती और तिमिर घोष। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं मीरा के इस भजन से जिसे गाया है आनंदिता सरकार ने। तो आइए सुनते हैं मीरा का ये भजन, कलाकार आनंदिता सरकार।
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This evening we present devotional songs. We begin the program with a Meera Bhajan. Our artist is Anindita Sarkar.

0: अभी आप मीरा का ये भजन सुन रहे थे। आज की कलाकार थी आनंदिता सरकार। आइए अब आपको सुनवाते हैं मीरा का ही एक और भजन। कलाकार हैं अनिरुद्ध नाथ। तो आइए सुनते हैं मीरा का ये भजन अनिरुद्ध नाथ की आवाज में।
1: यू वर लिसनिंग टू मीरा भजन। आवर आर्टिस्ट वॉज अनिंदिता सरकार। This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Listen now to Ameera Bhajan by our artist Aniruddha Nath.

0: लीजिए प्रस्तुत है एक और भजन, कलाकार हैं अनुराधा चक्रवर्ती।
1: यू आर लिसनिंग टू मीरा भजन बाय आवर आर्टिस्ट अनिरुद्ध नाथ। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। वी नाउ प्रेजेंट भजन बाय आवर आर्टिस्ट अनुराधा चक्रवर्ती।

0: हिंदुस्तानी संगीत के तहत अभी आप भक्ति संगीत के कार्यक्रम में भजन सुन रहे थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्यामा संगीत। आज के कलाकार हैं तिमिर घोष।
1: यू आर लिसनिंग टू भजन बाय आवर आर्टिस्ट अनुराधा चक्रवर्ती। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। कंटिन्यूइंग द कॉन्सर्ट वी नाउ प्रेजेंट श्यामा संगीत। Listen now to Shyama Sangeet by our artist Timir Ghosh.